0: लाखांड रेडियो ITN
1: दशक हाथ के जनता विश्वास से साह प्रसाद एविनागत क्रिमिराज आयुर्वेद औषध वेतीन क्रिमिराज कराल कुली बड़े हमारे साह लादरु पड़ रोग संधा शनि के स्वेद क्रिमिराज कराल कुली ISO GMP तत्व साथ के लात क्रिमिराज निष्पादन है कागिल स्लाफ ऐतलु दिवेन पुरासी लुम देशी औषध वेलंद सेल साह ओबटे लांगे में वेलंद सेल
2: ओबे कोटिपति सीने अद सेबे वेद रात्रि दहाईट लाखांड अहान जातिक लोत्रय मंडले सीनुम टिकट पत्तोल जाग्राही प्रतिपाल अद रात्रियेम उबट कियन एकम रेडियोव लाखांड

0: लखंड रेडियो आईटीएन
1: विलाव सोस दिखाए
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दोतराई ये पेरली करन एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपर टैग द अमतरव रुपियाल कोटी का पावर सुपर टैग सह ग्रैंड सुपर टैग द सुपर रिमोट रतिया एनएलबी मेगा पावर ओबर अदम मिलदी कानू

0: 97.7 लाखाना रेडियो ITN
1: हवस देखाए बनाते विसे एकाए
2: कृषि क्षेत्र नव पनक लिबिन कसागल प्लांटेशन मगिन अरब अति प्रधान व्याप्रति अतर उबट समीप कसागल ग्रीन सूपर मार्केट चालिया इता अड़ मिलकन नेटते उबे पसु मीट सहन मसक रूपये विसे पंदा सक दक्व मिलती गिनेम सदहा नय सहन हंदुना दुन एकम सूपर मार्केट चालिया
3: महाजन संपत रटटम संपत